केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शाहरा NH 148 AE ले 6 लेन वाली सड़क सुरंग दे निर्माण नो मंजूरी दिती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरी कमेटी नू अपनी सिफारिश छेती ही सौंपण ले किया। भारत ते मलेशिया ने कल नवी दिल्ली दे विच 12वीं सब कमेटी दी मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग दे पहलुआं दी समीक्षा कीती। पंजाब समेत देश भर दे विच विकसित भारत रोजगार अते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून लागू हो गया है। पंजाब सरकार दे वल्लों कल संगरूर जिले दे धुरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सतिकार योजना दी शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु अते सेवा कर GST की वसूली लई 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत दे वल्लों बागवानी विभाग के कामकाज की समीक्षा, प्रशासनिक सुधारा अते किसान पक्षी विकास दे दिता जोर। पंजाब राज खुराक कमिशन दे चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा दी ने मीटिंग दौरान राशन डिपुआ, आंगनवाड़ी केंद्रा अते मिड डे मील दी समीक्षा दा जायजा लिया। अते मौसम विभाग ने आज तो 6 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ दे विच कई थावां दे उत्ते भारी बारिश दे बारे येलो अलर्ट जारी किया। ये सन हुण तक दीआं FM न्यूज़ हेडलाइंस।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एफ एम एंड 102.7 MHz एफ एम रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेरे 9 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस।

हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार जी। दोबारा तो आ गई आज जी मैं थोड़ी अपनी आरजे अंजलि। दिला तो

ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा नहीं, जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही, कांच के टुकड़े बन के रहांगे तो हाँ कोई सानू हाथ भी नहीं लाएगा। डरते हैं ना लोकी कि कितने असी ही जख्मी ना हो जाइए, और जिस दिन असी एक शीशा बन जावांगे, दर्पण बन जावांगे, तो कोई बिना देखे थानू रह ही नहीं पाएगा। राम स्वरूप अरोड़ा जी सानू मैसेज किया जी, सुल्तानपुर लोधी तो सानू ये मैसेज आया जी। और अगला मैसेज किन्ना दा आ गया जी, आ जाओ जी, लंबा जहा मैसेज है, सुन के जाइए।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची नाल आज नवी दिल्ली विच सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात करनगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO वालों वित्तीय साल 2025-26 लई व्याज दर 8.25% रखने का ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत में वट्सएप से नवी यूजर नेम फीचर संबंधी मेटा नू नोटिस जारी किया। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मंगया। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब नू ढाहुण की सख्त निंदा की। दिल्ली सरकार ने हवा प्रदूषण नू रोकने लई सर्द रुत का स्थाई प्रदूषण मास्टर प्लान असूचित किया। भारत ते मलेशिया ने कल नवी दिल्ली विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुआ की समीक्षा की। पंजाब सरकार वालों कल संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु और सेवा कर GST की वसूली विच 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। मौसम विभाग वालों दक्षण पछमी मौनसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते देर रात तो मीह पै रहा है। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड विचकार बीती रात चेस्टरली स्ट्रीट विखे पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द होया। इस एफएम न्यूज हेडलाइंस से हुन पेश है प्रोग्राम गीत बहार। बस इस ब्रेक तो बाद।

एंड हुन ते गीत बहार शुरू हो गया, उस तो बाद पंजाबी तड़का, उस तो बाद बोलो बोलो स्वीट स्वीट की नहीं, मैं मिठा खान नू नहीं कह रही हैगी, मैं होम स्वीट होम की गल कर रही सी। दैन उस तो बाद तुसी इंजॉय करोगे मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम, मतलब 2 बजे तक मैं तुहाडा अच्छी तरह दिमाग खराब कर देना है, दिमाग दियाँ गरारियाँ कमा देनियाँ हैगियाँ, तो तुहानू खूब मज़ा आन वाला हैगा। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सुन जाए गीत दे नाल। होर तुसी ये सोच रहे होगे कि भी पहली गल मैं केड़ी करूँगी, मैं जे तुहानू हुण ही दस दूँगी ते फिर मैनू मज़ा नहीं हैगा, इसलिए तुसी करो जी प्रोग्राम दा आगाज इस गीत दे नाल। ते मैं तुहाडी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा तो हैगी हाँ तुहाडे नाल गल्लां करन नू। फिलहाल दी कड़ी आ रहा जी एक प्यारा जिहा गीत।

अकेले हम अकेले तुम, नहीं मैं शेर व शायरी नहीं करन लगी, फिल्म का नाम से जिदा हुणी तुसीं गीत सुनिया उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ दे विच, वाह मज़ा आ गया, बहुत ही वधिया गीत सुनिया तुसीं। वैल गीत जिहड़े हुंदे ने ना दिल नूं सुकून दिंदे ने, एंड इदां ही हुंदे ने कुछ फ्लावर्स फुल अलग अलग वरायटी दे जिहड़े कि बहुत सोहणे हुंदे ने, उन्हां दी जदों असीं खुशबू लैंदे हाँ सानूं बहुत अच्छा लगता है, दिल में सुकून मिलता है। पर तुहानूं इह पता है कि कुछ फ्लावर्स जिहड़े ने फुल थोड़े जिहे डेंजरस भी हुंदे ने। हुण तुसीं सोचो कि भी इह कितना डेंजरस हो सकते हैं, तुहानूं दस देवां कि कुछ इदां दे प्लांट्स हैगे आ जिहड़े कि छोटे छोटे जीव जंतु है उन्हां नूं खा जांदे ने। बिल्कुल सही गल कह रही हैं, जिदा कई लोग आपां जे इंसानां दी गल करिए, कई वैजीटेरियन होंदे ने कई नॉन वैजीटेरियन होंदे ने, सो उसे तरीके दे प्लांट्स होंदे ने। हुण जिहड़े प्लांट्स खा जांदे ने उन्हां विच कुछ दे नाम मैं तुहानूं दसदी हैगी है कि उन्हां विच एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। इह जिहड़ा प्लांट हुंदा हैगा, एक तां हुंदा है जिहड़े थोड़े अग्गे दंदे बने हुंदे ने, जिते ही कोई विच आ के जानवर छोटा मोटा बहिंदा उहनूं उह अद्धा टप इदां करके बंद कर लैंदा ते खा जांदा उहनूं। हांजी मैं सही गल कह रही हां। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਨਾ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, तो मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भी आ गई हैगी है, बहुत सोहनिया क्यारियां लगी, मतलब कि गमले लगाए हुए है एक सार लाइन दे विच प्रॉपर तरीके दे नाल। पॉल जी जो सराबा नगर तो जिन्हों की कॉल आई से उन्होंने सानू फोटोज़ भेजी हैं, उन्होंने हर एक एंगल तो फोटो मैनू भेज दी हैगी है, प्रॉपर तरीके दे नाल मैनू गमले देख रहे हैं, सोहने सोहने प्लांट्स उहदे ते लगे हुए ने, नाले गुआंढियां ने कपड़े सुकने पाए ने, वह भी मैनू देख रहा है। इन्होंने टैरिस के उत्ते भी सारे एक साइड पर गमले रखे हुए ने, मतलब बहुत ही सोहने तरीके दे नाल सफाई दे नाल अपने घर नू जिहड़ा है ना डेकोरेट किया है। जे तुसी भी फोटोज़ भेजना चाहते हो

हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। पहुंच गई फे द्वारा मैं प्रोग्राम लेके होम स्वीट होम तुम्हारे फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। मैं तुम्हारी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा। हुण तुसी सोच रहे होगे भई की करना है, तुहानू वैसे पता ही है कि डायरी ते पेन लैके बैठना है, क्योंकि इस प्रोग्राम दे विच ते किन्नियां सारियां गल्लां हुंदियां, रेसिपी दसदी हैगी आ, उहदे इलावा होर कई नुस्खे दसे जांदे ने, कोई काम दीआं गल्लां दसियां जांदियां ने, घर नूं किदां सोहणा बनाउणा है उह दस्सिया जांदा हैगा, काम ते तुसी किदां अपनी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट कर सकदे हो उह दस्सिया जांदा हैगा, बहुत सारियां गल्लां कीतियां जांदियां ने इस प्रोग्राम दे विच। ते फिर पेन एंड पेपर तैयार है ना। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गीत दे नाल, उस तो बाद की खास है इस प्रोग्राम च पता लग जाएगा जल्दी।

अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं, ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं।

0: उमंग कहती है।
1: अरे प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।

0: फिर गाइए ना।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
2: दिल की उमंगे हैं जवान।

दिल की उमंगें हैं जवान। मुनीम जी फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत को आवाज़ दी थी हेमंत कुमार, गीता दत्त और ठाकुर ने।

0: आप भी सुनिए ना, एफएम रेनबो चल रहा, मिंटी मेलोडीज चल रहे।
1: वाह जी वाह, बहुत खूब गीत फिल्म मुनीम जी तो असी सुनिया, मतलब गीत विच इन्ना क ज़्यादा मज़ा आया सुन के।
0: आप भी गाई है ना, वाह वाह,
1: आउट ऑफ म्यूजिक जा रहे सी, बट टू गुड, मज़ा आ गया गीत सुन के। फिल्म इदा ही तुसी इंजॉय की, फिल्म का गीत इंजॉय किया, तो हूँ अगला गीत मैं प्ले कर लगी हाँ सारे लिए। मज़ा आता ना इदा के गीत सुन के, आह हा, दिल खुश हो गया। वो एक अलग ही दौर था, वो समय ही कुछ और था, उन शांत और खूबसूरत फिजाओं में, उन शांत और खूबसूरत फिजाओं में बस चाहतों का शोर था, बस चाहतों का शोर था।

0: ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰੈਂਡਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੀਤ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਹਿਲੀਜ਼। ਦੀਵਾਨਾ ਹੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁਝੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। कुछ शरारत तो की होगी तुम्हारी निगाहों ने, और अकेले इसका गुनहगार मैं तो नहीं। सुनते अगला गीत, फिल्म का नाम दसवा दस ही दिनी है। इस गीत नू आवाज़ दिती है रूना लैला ने ते नाल भूपेंद्र ने, तो फिल्म का नाम है घरौंदा। इस गीत नू इंजॉय करते हैं प्रोग्राम च, ते मिड डे मेलोडीज़ प्रोग्राम जारी रहेगा 1:50 ते, क्योंकि 1:40 ते तुसीं सुनोगे खबरां। फिलहाल दी घड़ी आ रहा है गीत।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

चली मैं चली जी समा कह रहे हैं कि इजाजत ले लो, सो मैनू दे दियो इजाजत। प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इत्थे ही खत्म करन दी। सो दिस इज योर आरजे इंद्रप्रीत सरा सिंह यू बाय एंड टेक केयर। जाते जाते प्रोफेसर फिल्म का गीत लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी की आवाज़ विच तुहाडे लई।

ये कम ही दिखाई देते हैं, आंसू मेरे गम का सलीका रखते हैं। धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम अपने मन में इरादा रखते हैं। जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, भीड़ में भी हम खुद को तन्हा रखते हैं। हाय हाय, हम तो बस ये सोचकर खुश हैं ये चंद्र अपने बड़ों का साया सिर पर रखते हैं। क्या बात है, बहुत सोहना जी। मतलब जिहड़े शेर हुंदे सानू बहुत गहरी सोच

प्रेम मार्केट बठिंडा तो अमरजीत संघ जसल चूची। और अगला मैसेज सानू भेजा जी, आह क्या बात है यार, मैसेज बड़े सोहने सोहने भेजते हो तुसी। इश्क के बाजार में खासारे का, इश्क के बाजार में खासारे का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, छिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। ना जी ना, वैसे ना कई बार असी सोचते होंगे कि असी कल्ले हाँ, पर जेकर असी गौर नाल देखिए ना तो असी कल्ले नहीं होंगे, साढ़े नाल बहुत लोगों दी ब्लैसिंग्स होंदियां ने। जे फील किया जाए नेचर साढ़े नाल है, नेचर दे विच जीण वाले सोहने सोहने जीव जंतु साढ़े नाल है, सोहने इंसान जिहड़ी साडी कदर करदे ने ओह साढ़े नाल ने। असल च जिन्नू असी ज़्यादा चाह रहे होंने उहदे चक्कर दे विच असी बाकियां नूं भुल जांदे आ, ते सियाणे कहिंदे बाकियां नूं वी याद जरूर रखना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत मैसेज भेज रहे हो। ये मैसेज सानूं भेजा जी कुलविंदर टेलर जी ने, VPO कंडोला नियर आदमपुर तो। वाह जी वाह। सो अगला मैसेज सानू भेजा जी वाह जी वाह, तस्वीर भेजी इन्होंने रेडियो की भेजती है, राम स्वरूप अरोड़ा चौंक छेलिया सुल्तानपुर लोधी तो। ओके, इन्होंने सानू कोई फेसबुक का लिंक भेजा, असी ओपन करके पढ़ते हैं की लिखा जी। हाँ इन्होंने लिखा जी, उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए, आय हाय। उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के थे कुछ नम थे कुछ टूटे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे, आय हाय हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। एक रिक्वेस्ट है जी जिन्होंने ये सारा कुछ लिखा होंदा है, ते बाकियां नूं भी गुजारिश है कि उन्हां दे नाम जरूर लिख के भेजा करनगे लिखिया किन्ना ने, ते जे अपनी तुहाडी लिखावट है ते तुसी अपना नाम भी जरूर लिख के भेजा करो। बहुत खूबसूरत।

जी ने एक और आपकी फरमाइश है, वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा।

0: प्यार
1: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

वेलकम बैक दोस्तों, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिहदा नाम है दिल आज शायर है। कहिंदे ने कि गुस्ताखी हो गई जे गल्लां विच कदे साडी, मुस्कुरा के माफ़ कर देना, यही है यारी साडी। गुस्ताखी लफ्ज़ां दी सी, दिल दी नहीं सी, कदे जे दिल दुखिया होवे तेरा सिर चुका के माफ़ी मंगदे आं। रिश्ते उही खूबसूरत हुंदे ने जिते अहंकार नहीं हुंदा। गुस्ताखी भावें हो जावे पर माफ़ी मंगण तो इनकार नहीं हुंदा। हर गुस्ताखी दा इलाज सिर्फ एक लफ्ज़ है, माफ़ कर दिओ। इस विच ही रिश्तियां दा असल नूर है। गुस्ताखियां तां इंसान तो ही हुंदियां ने, माफ़ करना ही फरिश्तियां दी पहचान हुंदी है। दिलां नूं जितना होवे तां झुकना सिख लो, गुस्ताखी तो बाद माफ़ी मंगना सिख लो। देखो जी, जिंदगी दे विच सियाने कहिंदे ने कि सब तो वड्डी जिहड़ी तुसीं किसे नूं गिफ्ट दिंदे हो ना, ते रिश्तियां दे विच खास करके सब तो वड्डा गिफ्ट ही वो है माफ़ी। गुस्ताखी माफ़ या मंग लो ते या माफ़ी दे दिओ। सो ये बहुत ही वड्डी जिहड़ा

0: जी, उसने हिंदी तबाह कर दी
1: जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात का असर लें और अपनी भाषा को भी सुधारें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। के टंडन जी हमारे साथ थे, जो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, थिएटर डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, पोएट्री की बुक्स लिख चुके हैं, बॉलीवुड और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, और उनकी किताब चेजिंग केओस भी, ऑटोबायोग्राफी, जरूर आप पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।

0: देश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं, उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर।
3: और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर

0: कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
1: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
0: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
0: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
1: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दूं?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
1: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
1: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने

0: आ रहा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
1: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूं। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गद्दी पर बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा है?
7: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे?
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।

0: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
1: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
0: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
1: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
2: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
3: हम सब अच्छे हैं।
2: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
3: जी हम तैयार हैं।
2: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
4: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
1: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
0: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
2: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
1: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
2: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
1: जी मेरा नाम श्रुति है।
2: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
5: सूर्य ग्रह है या तारा?
2: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
1: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
2: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
3: अच्छा सर।
0: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
1: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
2: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
0: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
2: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला?
0: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
2: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
1: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
2: जरूर बच्चों। देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
2: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
1: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
2: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर मेरा नाम दिवाकर है।
2: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
2: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
0: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है,

0: क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
0: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
2: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
0: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
2: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
4: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहता आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार जी।
1: अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल, तो उठाइए अपना फ़ोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर। सवाल जो है 011-2342-1080 और 011-2342-1082। और हाँ,

आप व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत लेकिन एक इस प्यारे से गाने के साथ।

0: डॉक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना है।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अगर अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कीजिए ना फ़ोन हमें। हमारा नंबर है 01123421080 और 01123421082, और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या?
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझें, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं पूर्ण आनंद के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है, जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को विकसित करते हैं, उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
0: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है, वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
0: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर लें कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है।
0: हाँ,
2: है ना?
0: जी जी,
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके। हाँ। और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व हैं उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोचिए आज से
0: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है
0: जी।
2: अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें
0: जी,
2: तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
0: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो हैं वो आपको एक नेटवर्क

0: थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जेंट आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरियाज हैं आपके इन, और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं, जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जैसे कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है, और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल। अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, तो फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीज़ें
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है
1: हाँ
0: जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं,
1: जी जी
0: इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं,
1: जी
0: तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा,
1: जी

0: अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं,
1: जी
0: इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं।
1: जी
0: तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा।
1: जी
0: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते हैं,
1: हाँ
0: ये भी
1: ये
0: एक
1: तो है।
0: है ना। तो
1: हाँ
0: देखिए, भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं
1: हाँ
0: जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं,
1: हाँ
0: है ना। एक NK होता है जो नेचुरल किलर होती हैं,
1: अच्छा,
0: और एक ये मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है प्रकृति ने, ईश्वर ने
1: जी
0: हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें डाली हुई हैं।
1: जी
0: और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे, और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीज़ों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की है या बाहर से आई हुई है, जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो
1: जी
0: ना
1: जी
0: हो पाए,
1: जी
0: और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें। ये
1: जी
0: इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने कितने दिन, मतलब कितने सालों पहले कही थी। तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या हैं, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी जो मैंने ये समझाने की कोशिश की है, उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी। अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं।
1: जी
0: धातुएं मतलब जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है,
1: जी
0: ये धातुएं हैं।
1: हाँ
0: अब ये धातुओं में कौन सी, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज।
1: हाँ
0: ओज बोलते हैं
1: हाँ
0: ना वो, कि
1: हाँ
0: आपका ओज कम लग रहा है,
1: हाँ
0: मतलब आपकी वाइटैलिटी
1: हाँ
0: ओवरऑल, जो आपको एक जूस की जो जरूरत है वो
1: हाँ
0: अब आपका कम लग रहा है,
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: बुझे बुझे से लग रहे हो। तो
1: हाँ
0: ये कहीं ना कहीं दिखाता है
1: हाँ
0: कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। मैं बहुत
1: लो
0: साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ,
1: हाँ
0: ताकि ये लोग समझें कि हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें।
1: हाँ
0: इसीलिए आयुर्वेद की जीवन शैली,
1: हाँ
0: इसीलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो कहा गया है,
1: जी
0: इन सब के साइंटिफिक रीजन है, हम एक के बाद एक लेते चलते हैं।
1: हाँ तो डॉक्टर विनोद आपसे
0: जी
1: जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस ये कॉन्सेप्ट क्या है।
2: देखिए, ओज या ओजस ये
1: जी
2: वैसे हृदय में अष्टबिंदुवात्मक के इस मात्रा में रहता है,
1: जी जी
2: लेकिन जैसे मैडम ने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु,
1: जी
2: ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना
1: जी जी
2: पौष्टिक है,
1: हाँ
2: उससे जो रस धातु यानी उससे जो आहार रस मिलता है
1: जी
2: वो
1: जी
2: धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है,
1: हाँ
2: और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है
1: जी
2: उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है
1: अच्छा
2: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है,
1: अच्छा
2: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को बूस्ट करना,
1: जी
2: तो
1: जी
2: वो ओज धातु से प्रतीत होता है
1: जी जी
2: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है, तो
1: अच्छा
2: ओज धातु का बड़ा महत्व है।
1: हाँ। तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है,
2: जी,
1: ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है। ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से।
2: जी देखिए, लंघन में
1: जी
2: जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं,
1: जी जी
2: जैसे कि आप लंघन क्यों कराते हैं,
1: जी
2: लंघनम आदौ चिकित्सा यानी
1: जी
2: पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब
1: हाँ
2: पहला पांव है,
1: हाँ
2: वो
1: हाँ
2: है लंघन कराना। तो
1: अच्छा
2: लंघन क्यों कराएंगे, जब
1: अच्छा
2: शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी,
1: हाँ
2: आम
1: हाँ
2: दोष की अवस्था होगी, तो
1: हाँ
2: देखिए बिना किसी औषध के
1: जी
2: आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन
1: हाँ
2: करा दीजिए।
1: हाँ
2: लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं।
1: अच्छा
2: लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं,
1: जी
2: ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए,
1: जी
2: ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे
1: हाँ
2: धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी,
1: जी
2: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी

0: शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी।
1: जी जी
0: तो इसीलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है, इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए, व्रत की प्रथा चालू की गई कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी, शरीर की भी स्थिति होगी, तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं। तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए।
1: जी, तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखी आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है, तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
2: देखिए, ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
1: हाँ।
2: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है
1: जी।
2: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या संयुक्त है, या दो दोष ज्यादा है, तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखें तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो वो है नोट्स, इन सब में आपके जो है वो जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी हैं वो वहाँ पे हैं। अब वो कैसे खराब हो रही हैं कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं, जो पचा नहीं फिर खा लिया। तो हमारे यहाँ सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जब पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
1: जी
2: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है और रस धातु रक्त धातु में नहीं हुआ है। अब आपने कहा कि लंघन, तो लंघन देखिए मतलब आपने अपने शरीर को खाने से वंचित रख रहे हैं, उसके अलग अलग पैटर्न है
1: जी।
2: कितना रखना, एक बार रखना, दो बार रखना, तीन बार और रखना
1: जी।
2: कि केवल अन्न त्यागना या केवल पानी पे रहना या दोनों ही त्यागना, ये सब आपकी बॉडी के जो टेम्परमेंट है और आपकी स्थिति जो है उसको चिकित्सक परीक्षण करके लंघन कराता है।
1: अच्छा,
2: ये जो नॉर्मल उपवास आपने आज रख लिया और कुट्टू की रोटियां खा ली और ये कर लिया, तो ये लंघन नहीं है।
1: अच्छा,
2: लंघन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो आम पाचन के लिए किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
2: पंचकर्म क्या है, शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे
2: नहीं, पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा अच्छा,
2: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन, मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए
1: जी।
2: तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है। हमारे स्रोत क्या है, जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वो नहीं हो रहा।
1: अच्छा।
2: तो वो रुके, ये सुनिए आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का, उसको ब्लॉक कर देंगे।
1: अच्छा।
2: तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा ये तो सबको मालूम है
1: जी,
2: है ना
1: जी,
2: नंब हो जाएगा है ना। तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व तो जहां तक पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच रहे, तो अवरोध हो गया। तो अवरोध हो गया, उस आम को हटाने के लिए लंघन श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन चिकित्सक के निगरानी में। अब आपने पूछा कि पानी कैसे है
1: जी,
2: तो पानी का भी वही है, मैं एक गिलास पीती हूँ, आप दो गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या है, 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है। अगर वो हट रहे तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है जिसके कारण आप स्वस्थ हो। जरा भी आप देख लीजिए, सोडियम बढ़ा दीजिए या कैल्शियम ये पोटेशियम बढ़ा दीजिए, या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना, वो सब

0: आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी।
1: अच्छा
0: और इसीलिए कहा गया है कि बानी जितनी भी सेल्स में, क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं,
1: जी,
0: और इसी से सिक्रीशंस ब्लड जो है वो आपको पोषण सारी बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है। तो उसको लिक्विड रहना, कितना बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ये मालूम है ना।
1: जी, जी, जी,
0: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है।
1: अच्छा।
0: ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो कि फला कियो कि खाने के पहले पियो कि खाने के, ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले
1: हाँ,
0: को
1: तो
0: और कितना पीना चाहिए। लेकिन
1: जी
0: मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास
1: हाँ, हाँ,
0: एक बार में पानी पीना चाहिए, लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीनी
1: इकट्ठे
0: चाहिए,
1: नहीं
0: सिप सिप
1: पीने
0: सिप करके
1: जी,
0: पीना चाहिए,
1: जी, जी,
0: ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि
1: हाँ, हाँ,
0: बहाना
1: जी,
0: रसाना
1: हाँ, हाँ,
0: वो चलता रहे।
1: अच्छा। और डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं।
0: जी
1: ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं। इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन, बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि जो रोड मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है या
0: बहुत अच्छा प्रश्न है
1: कैसा।
0: इनका
1: हाँ
0: कि देखिए जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो फाइट
1: हाँ
0: कर लेते हैं।
1: जी जी
0: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है, स्किन
1: हाँ
0: में जो बैरियर है, जो
1: जी जी
0: फिजिकल बैरियर है, और स्किन्स में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज पैथोजेंस है, केमिकल्स हैं, आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है
1: जी
0: उसको रोकते हैं।
1: जी जी
0: लेकिन गट, मैंने कहा ना गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी की सेल्स हैं,
1: जी
0: तो वो जो जो जिनको रोड में जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का, तो उनको खाना भी उतना ही है,
1: हाँ
0: वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खा
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी जी
0: ये बात अलग है कि उनको माल न्यूट्रिशन है तो विटामिन सी डी जो हमें ज़रूरत है
1: हाँ हाँ
0: जिन,
1: जी जी जी
0: ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन डी मतलब डी की कमी है,
1: हाँ
0: वो अलग इशू है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: भाई वो माल न्यूट्रिएंट है,
1: हाँ हाँ
0: उनकी मैकेनिज्म भी स्लो हो जाएगी,
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: नहीं कल। लेकिन जहाँ तक ये स्वच्छता की बात है,
1: जी जी
0: टू मच हाइजीन, मैं आपको बता दूँ कई लोग दिन भर अपने हाथ डिटॉल से धोते रहते हैं,
1: हाँ तो
0: कोई
1: यही
0: भी,
1: इनका पूछना है
0: ये
1: जी।
0: आपको मैं बता दूं दिस इज अनदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
1: ओ
0: वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो। तो
1: जी
0: स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है,
1: जी जी
0: देखिए हर चीज का एक साइंस है। टू
1: जी
0: मच हमारे यहाँ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित
1: जी
0: और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्जित है ना,
1: जी जी जी
0: तो और उल्टा सीधा और भी वर्जित। तो
1: हाँ
0: हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि समदोष और समाग्नि, हर
1: जी
0: चीज सम इक्विलिब्रियम में रखिए, तो
1: हाँ
0: प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप
1: जी
0: भी स्वस्थ हो।
1: जी डॉक्टर विनोद आपसे जानना
0: जी
1: चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या,
2: जी जी
1: तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है।
2: देखिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये एक ऋतु, जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतु हैं,
1: जी
2: वैसे आयुर्वेद में षड ऋतु
1: हाँ, छह
2: मानते
1: ऋतु
2: हैं,
1: मानते
2: हाँ
1: हैं।
2: 6 ऋतु मानते हैं,
1: जी
2: पर ज़्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को। इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से
1: जी
2: उसकी जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है,
1: जी
2: वो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है,
1: जी
2: वो
1: जी
2: आपके आहार पे बात करती है,
1: जी
2: आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है,
1: हाँ हाँ
2: इन सब चीज़ों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें।
1: जी जी
2: जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं,
1: जी जी
2: वर्षा ऋतु की।
1: जी
2: अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे, देखिए
1: जी
2: वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमांद हो जाएगा,
1: जी
2: यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहा है कि भूख नहीं लग रही है,
1: जी जी
2: पहला लक्षण है,
1: हाँ
2: इसका
1: हाँ
2: मतलब अग्निमांद हो गया।
1: जी
2: दूसरा वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है
1: हाँ
2: या लूज मोशंस हो रहे हैं।

0: या घबराहट हो रही है,
1: जी जी
0: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए? एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब से मिला जुला होने की वजह से आप में परिवर्तन आए। अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें,
1: जी।
0: खाना शरीर को कम दे, तो हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा। जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब में कमी आ जाएगी।
1: जी।
0: तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर क्या खाना नहीं है, कोई जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है
1: जी।
0: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे एक है, जल में घुले सत्तू को वर्षा ऋतु में निषेध कहा है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है
1: जी।
0: तो इससे हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीजें, जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन, हाँ। यानी वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो, जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयां हैं, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें, ये सब चीजें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य, जैसे खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं, पत्तेदार सब्जियों को रहने दें। क्यों? वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको मना करते हैं, और ऋतुजन्य फल और ऋतुजन्य सब्जियों का सेवन करें। उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अब सुन लेते हैं एक गाना।
0: हाँ,
1: बिल्कुल ऋतु अनुसार।
2: ऋतु अनुसार।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल है तो उठाइए ना अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर जो है 0112342 1080 और 0112342 1082 और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070। अब अगला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे पूछ लेते हैं
2: जी।
1: कि आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली पर काफी जोर दिया जाता है
2: जी जी।
1: तो ये हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंचकर्म क्या है।
2: देखिए अगर त्रय स्तंभ की हम बात करें
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं
2: जी जी।
1: हेलो
3: हेलो
1: जी अपना नाम बताएं।
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और पित्त मेरी प्रवृत्ति है
1: जी।
3: तो पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी। मेरे दो मिथ्स हैं और दो ही मेरे सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा ये कि किसी शख्स से यदि इसकी पित्त प्रवृत्ति है तो क्या उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, होती है। दूसरा मिथ कि जो लोग मैंने सुना है कि अगर माँ के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध पिए या बकरी भैंस का दूध पिए या डाबर चंद्रप्राश खाए सोना चांदी बैजनाथ चंद्रप्राश खाए तो इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये कहाँ तक सही है। और तीसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि पहले दवाएं वो प्रोड्यूस वो करते इन्वेंट वो करती है डॉक्टर के पास बाद में पहुंचती है वो, तो अगर वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करती है मार्केट में तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट दवाई खानी पूरा सेवन कर लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेके वह दवाई खानी चाहिए। और चौथा अहम सवाल मेरा ये है कि ये खासतौर राखी मेरा मैम से मेरा सवाल है कि मुझे ना क्या है कि ये लीवर फैटी या अल्सर में से कोई प्रॉब्लम है और ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, श्वसन एलर्जी स्किन एलर्जी कुछ हद तक और निद्रा की प्रॉब्लम है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या ये भी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है क्या, और इसके लिए मुझे घर बैठे बैठे क्या करना होगा। और इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ठंड में जाऊँ तो मेरी ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है नेक में और हिप्स में, और अगर गर्म वातावरण में रहूँ तो उससे मुझे निजात मिलती है पर मेरी पित्त प्रवृत्ति भी है। तो इस असमंजस में हूँ मैं उसे ढूंढ में, मैं क्या करूँ प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी
4: जी। राजेंद्र जी जैसा कि आपने कहा कि पित्त

0: प्रकृति है आपकी, यानी कि आपकी जो है वो तीक्ष्ण अग्नि हम हो सकती है। और इसमें क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी जो रिस्पांस है वो भी बहुत फास्ट होता है, और इसी में एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि TH1 और TH17 जो है वो टाइप के जो फिनोटाइप हैं वो IgE आपका CRP ये बड़ा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में यदि आपको प्रकृति नहीं प्रकृति यदि आपको प्रकृति पता हो तो आप उसको उससे होने वाले जो मतलब वो बाय नेचर आपको मिला है तो उसको आगे ना बढ़े और वो अलग रोग ना पैदा करें। इसीलिए व्याधि के जो उत्पादक तत्व हैं उनको रोकते हुए खान पान बताया जाता है, और आपकी व्याधि क्षमत्व प्रतिबल जो है, जो सहज बल है, कालज बल है, ये हमारे अलग अलग बल हैं। मतलब सहज जो आपको खुद का मिला हुआ है, का जो माता पिता से आपको प्राप्त हुआ है, आपके इनबिल्ट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन से मिला हुआ है, और कालज में आपके जो ऋतु है, दिनचर्या है, आपका कैसा खान पान है, आप सही फॉलो कर रहे नियमावली आयुर्वेद की, तब आपको इससे तकलीफ नहीं होगी। तो आपने जैसा कहा कि ये आपको जो तकलीफ है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है कि अब आपको वही झेलना है, आपको एक चिकित्सक को सलाह लेनी है, खुद मिलना है, और अपना पूरा एक डाइट प्लान। और आपके लिए मैं आपको बताऊं, जो पित्त प्रकृति है उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी हुई तो साइटोकाइनिन जो ये एक इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये फैक्टर, और ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है। तो नींद कितनी आप करते हैं, रात में इरिटेटेड रहते हैं या एसोसिएटेड और भी कोई बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले बहुत बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
1: अब हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
2: मैम को भी नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते
2: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला, सिरोही लोनी जिला का।
1: जी अपना सवाल पूछें।
2: जी मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह रहता है,
3: किस चीज के?
2: तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाता है जैसे, तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसमें हम जैसे कि घरेलू उपाय में क्या लें, जैसे कि काजू बादाम वगैरह ले लेते हैं, ये चीज लें या ना लें, किशमिश वगैरह जैसे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: किस चीज की तकलीफ है, किस चीज के कारण वीकनेस ज्यादा हो जाती है आपको?
1: हेलो, आप अपना सवाल दोहरा दें।
3: किस चीज से
2: जी,
3: आपको
2: आवाज
3: वीकनेस,
2: आपका, हेलो,
3: किस चीज से आपको वीकनेस हो जाती है?
2: जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते
3: हाँ
2: हैं
3: हाँ
2: उनके
3: हाँ
2: बारे
3: हाँ
2: में जानना
3: बिल्कुल
2: चाहते हैं।
3: बिल्कुल। अब मैं
2: हाँ जी,
3: आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो ओज धातु की क्षीणता की वजह से ये मसल लॉस होता है, मांसपेशी में जो उसके पोषक तत्व हैं उनका लॉस होता है। उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जो घरेलू उपाय कुछ हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और तमाम डायबिटीज़ में होने वाली समस्याओं को। जैसे आप त्रिफला का नित्य सेवन करें। त्रिफला दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो रात में 1 चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में पानी से लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, कोष शुद्धि होने से भी मधुमेह में आपको लाभ होगा। दूसरा, यदि त्रिफला को सुबह आप शहद से या पानी से लेंगे तो ये आपको रसायन के रूप में प्रयोग होगा जो आपकी व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, आंवला का मुरब्बा जो शहद में बना हो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप और सूखी हल्दी का पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको मधुमेह में लाभ होगा। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन काफ़ी आ रही है तो जामुन खाइए, जामुन के बाद उसकी गुठली निकाल लीजिए और उसे सुखा के उसको पाउडर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा इसमें डायबिटीज़ में। और ये सारी चीज़ें आपकी जब रोग को कम करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके

0: अलावा एक पंचनीम चूर्ण भी आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एंटी डायबिटिक के साथ साथ स्किन की कोई प्रॉब्लम है वर्षा ऋतु में उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उसमें स्वर्ण का प्रयोग है, जैसे वसंत कुसुमाकर रस का हम लोग प्रयोग कराते हैं। जहाँ एक्सट्रीम डायबिटिक वीकनेस आती है वहाँ गोल्ड की प्रयोग करने की वजह से आपको तुरंत नर्वाइन वीकनेस में, जो नसों की कमज़ोरी बताते हैं, वहाँ पर बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। खान पान में थोड़ा मिठास का कम करके प्राकृतिक चीज़ें, सीज़न में उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करें तो आपको, आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी, आपके रोग में भी कमी आएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में, तो बताएं कि ये पंचकर्म क्या है।
0: देखिए, पंचकर्म जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पांच विधाओं की खोज की गई, जो इसका जो सिद्धांत था कि शरीर को सबसे पास के रूट से गंदगी को या टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो आपके नाभि से ऊपर के हिस्से की टॉक्सिन्स निकालनी है अगर आपको, तो उल्टी करा के सबसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल उल्टी नहीं होती है, हम इसे वमन कर्म कहते हैं, जो पहला कर्म है। और कफ दोष, जो वात पित्त कफ है, इनमें जो प्रधान दोष, एक मेन दोष ऊर्ध्व भाग में ऊपर के हिस्से में कफ दोष रहता है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम स्नेह पान करा के उसको घी पिला के पेशेंट को तैयार करते हैं और फिर वमन कराते हैं। वमन की प्रक्रिया होने से आपका कफ और पित्त दोष, दो दोषों पे हम अच्छा प्रभाव लाते हैं और शरीर को अच्छा है। इसके बाद आता है विरेचन कर्म, यानी नाभि से नीचे के हिस्से में जहाँ पित्त दोष प्रमुखता से होता है और वात दोष, इन दोनों दोषों को नियंत्रण करने के लिए हम विरेचन कर्म करते हैं। तो दोनों का क्रम है, पहले आप वमन कराएं फिर विरेचन कराएं। दूसरे में नस्य कर्म कराते हैं, बस्ती चिकित्सा वात की शांति के लिए कराते हैं, और रक्त मोक्षण यानी ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार के पांच प्रोसीजर हम कराते हैं। अन्य पैरस प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करा सकते हैं, तो रोगी पे हम करा देते हैं।
1: जी जी, अब अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: नमस्ते।
2: मेरी उम्र है 70 साल की।
1: जी जी।
2: पहले तो बधाई आप लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो, आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज मिली है, क्या क्या चीजें मैं ध्यान से सुनने से।
1: जी जी, शुक्रिया।
2: तीनों को, तीनों आप बधाई पास करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि कोई काढ़ा बना सकते हो आयुर्वेदिक उससे, जिससे कि
3: आपने अपना नाम क्या बताया?
2: रमेश
3: जी। रमेश जी, एक तो पहली बात है कि आप बीपी के हैं, तो कौन सा टाइप का बीपी है, कितने रेंज में है, ये परीक्षण एक बार एक चिकित्सक से जरूर दिखा लें। और ये बहुत गलत धारणा है कि बैठे बैठे कोई काढ़ा अगर हम बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हैं। आपको कौन से उसकी जरूरत?
2: जी डॉक्टर साहब, ऐसा था कि जब कोविड वगैरह हुआ था तो काढ़ा के बहुत बहुत रेसिपी आती थी।
3: ठीक है जी जी।
2: हाँ, तो उसको मेरे को काढ़ा का पहले उस टाइम मैं बनाया करता था, वो मैं भूल गया, मिसप्लेस हो गया। तो मैं चाहता हूँ आपको ऐसा काढ़ा वाला जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो सकती है, बहुत इफेक्टिव था काढ़ा जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, तो आप उसमें हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
3: जी जी, वो गिलोय का जो है वो हम लोग काढ़ा देते थे, उसका रोल अलग था। गिलोय की मात्रा और किस तरह से बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रिसर्च से कंसर्न हूँ इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जो नॉर्मल आप लोग तोड़ करके कुछ भी, जैसे हम लोग ज़रूरत पड़ने पे हम विष को भी अमृत बना लेते हैं, है ना, उसके संस्कार करते हैं। संस्कार यानी उसके वो चीज़ें जो पॉइजनस है उनको हटा के कितनी मात्रा में, कितनी डोज में, किसके साथ, कब खाने के पहले बाद में, ये सारी व्यवस्था एक चिकित्सक दवाई जब यूज़ करता है ना तो इसका विचार करता है। और अगर हमने, मैंने ये बहुत सारे प्रयोग देखे थे जब काढ़े के बताया गया था, तो लोगों ने सारी गिलोय साफ़ कर दी और ले लेकर के उसमें कई चीज़ें उनको रिएक्शन भी हुई हैं। इसी तरह जैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुलसी दल, दो तुलसी

0: सिदल भी जो है सुबह अगर आपने पानी के साथ में
1: ओके
0: उसको निगला तो भी अच्छा है, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाते, वो भी एक दिक्कत है। लोग बोलते चबाने, उससे भी दांतों का आपका इनेमल ख़राब होता है, उसके जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो ख़राब कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, आपकी उम्र 70 साल की है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा की कितनी मात्रा लेना है, क्योंकि अश्वगंधा कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, लेकिन कई बार बीपी को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर कोई भी औषध ले रहे हैं, देखिए खाना और औषध में यही फ़र्क है कि खाना आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लोगे तो वो औषध बन जाएगा, और औषध जो है वो अपने हिसाब से लोगे तो वो नुकसानकारक जो है वो कहीं दवाई आपको और नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मेरी सलाह मानिए, एक चिकित्सक को दिखाना बनता है और उनसे एक बार अपना चार्ट बनवा लें और ज़रूर लें, लेकिन अश्वगंधा कितनी मात्रा में दूध के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है।
2: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया सुधीर सिंह का, जो कुतुबगढ़ से आया है। वो पूछ रहे हैं कि कुसुमाकर रस गोल्ड वाला कितने दिन तक खा सकते हैं, और ये मलाई के साथ ठीक रहेगा या शहद के साथ?
3: देखिए, वसंत, कुसुमाकर रस जो है अपने चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें स्वर्ण जैसी औषधि होती है, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रयोग कराते हैं। शरीर में जितने समय में इसका लाभ आ जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए, उतने समय के लिए ही प्रयोग कराते हैं। लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग और उपयोग करें और इसका लाभ ले सकते हैं।
2: और हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो,
4: मैडम जी नमस्कार,
2: नमस्ते।
4: और डॉक्टर साहब को भी दोनों को नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार
4: जी। मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं।
3: जी
4: मेरा
3: जी
4: गांव कुकनिया, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
3: बताइए।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं 2002 से दिमाग की दवाइयां खाता हूँ,
3: जी
4: और
3: जी
4: मेरा छोटा भाई है वो 2009 से,
3: जी
4: उसको सिजोफ्रेनिया और मेरे को ओसीडी है,
3: ठीक।
4: ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड में हमारा फैटी लीवर आया दोनों का, मेरा ग्रेड 2 है, भाई का ग्रेड 1 है।
3: जी
4: तो आप ये बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड पे क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकती हैं सर, कहीं से, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से भी
3: ये तो
4: आयुर्वेदिक दवाइयाँ
3: देखिए,
4: आयुष्मान
3: हाँ
4: कार्ड पे?
3: देखिए, ये जो जहाँ भी ये स्कीम लागू है वहाँ क्या व्यवस्था है, उसके हिसाब से आप लोकल स्थानीय स्तर पे इसको पता करें, ठीक है। दूसरी, जहाँ देखिए दो समस्याएं, आपकी एक लीवर की समस्या है जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ये दोनों भाइयों का पूरी तरह ठीक हो सकता है। और जो आपने अपनी तकलीफ़ बताई, ये तकलीफ़ थोड़ा कठिन है चिकित्सा में, लेकिन अगर आप सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप अपनी औषधियों का उपयोग करते हैं, आयुर्वेदिक, और पंचकर्म का प्रयोग करते हैं, तो मानस रोगों में लक्षणों को काफ़ी कम किया जा सकता है और आपकी स्थिति को बेहतर सुधारा जा सकता है। बाकी पूरी बात तो आपको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप यहाँ पे त्रिकटू एक होता है हमारा, सौंठ पीपल और मिर्च के से मिली हुई दवाई एक होती है, आपको मिल जाएगी वो। आप एक चुटकी खाना खाने के पहले ले सकते हैं, और दोनों भाई ले सकते हैं, आप ओसीडी वाले और आप जो दूसरे भाई हैं उनको भी, क्योंकि मेडिसिन जब बहुत दिन तक आप लोग खाते हैं तो उससे लीवर कहीं ना कहीं कुछ उसमें डैमेज होता है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव जितने भी दवाइयां हैं वो आयुर्वेद में बहुत बेहतर हैं। आप किसी चिकित्सक के सलाह से ये आप अपने लीवर को भी ठीक कर सकते हैं जी।
2: डॉक्टर साहब, एक नींद की समस्या,
3: जी
2: अभी स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर बात होनी चाहिए,
3: बिल्कुल
2: लंबी
3: बिल्कुल
2: बात होनी चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं जैसा।
3: बिल्कुल।
2: तो आयुर्वेद में इससे निदान पाने का और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम?
3: देखिए, जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए ना
2: जी,
3: स्वस्थ रहने के,
2: जी
3: उनमें आहार,
2: जी
3: निद्रा, ब्रह्मचर्य,
2: जी
3: यानी निद्रा भी एक इतना बड़ा फैक्टर है।
2: हाँ
3: अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो देखिए उस व्यक्ति की

0: भूख डिस्टर्ब होगी और नींद डिस्टर्ब होगी
1: जी।
0: ठीक है, यदि एक व्यक्ति को सोने को सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होगा, जिसमें मानसिक लक्षण आएंगे। तो इन सभी समस्याओं में और नींद को सही से लाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल, सरल, सुरक्षित औषधियाँ हैं। कुछ तो आपके आसपास भी उपलब्ध हो सकती हैं। इनमें अगर कोई औषध भी नहीं खानी है तो आप पंचकर्म में शिरोधारा का उपयोग करें
1: जी।
0: शिरोधारा से बिना औषध के आपको निद्रा आ जाएगी। दूसरी है नस्य कर्म। नस्य कर्म जिसमें कि आपके नाक में औषधीय तेलों का प्रयोग करके आपको नींद को हम लाते हैं। तीसरा है कर्णपूरण, यानी अगर आप कान में तेल डालेंगे, क्योंकि कान वात का स्थान है और वात जो है निद्रा को डिस्टर्ब करने में एक प्रमुख कारण बन जाता है, तो उससे भी हमारी वात की शांति से हमें निद्रा अच्छी आती है। तीसरा है पादाभ्यंग, यानी अपने पैरों की मालिश करना, तलवों की। यदि आप सोने से पहले अपने तलवों की मालिश करते हैं, इससे भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको नींद अच्छी आती है। तो इन सब प्रक्रियाओं से बिना औषध के भी नींद ला सकते हैं, और अगर आपको औषध की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में उपयोग करें।
1: जी हाँ, इसके साथ में प्राणायाम, ध्यान
0: जी, जी।
1: आप ये भी अपना सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक भावनाएं जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, और जिसके कारण आपके जो नर्वाइन जो है वो एक जो कॉर्टिसल लेवल स्ट्रेस के थ्रू आता है वो भी कम हो जाता है, और नींद पूरी करेंगे तो साइटोकाइनिन जो आपके लिए ज़रूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो भी पर्याप्त मिलता है। और एक तो देसी उपाय दादी नानी के ज़माने से किया जा रहा है भाई, और वो है कि आप एक गिलास दूध, गर्म दूध रात में पीना चाहिए। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ, और यदि डायबिटिक हैं तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। उसमें कई लोग कोई मुनक्के डालते हैं कुछ, तो ये एक प्रक्रिया जो है दूध पीने वाली है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि पादाभ्यंग रात को सोने के पहले यदि किया जाए तो और बेहतर, और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग टाइम कम करिए, और वो भी आप लोगों को सोने के पहले ये मोबाइल है, टीवी है, इससे कम से कम आधे पौन घंटे या एक घंटे दूर रहें, और फिर देखिए थोड़ा खाने के बाद में वॉक जरूर करें, खाने के बाद तुरंत लेट ना जाए। छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो नियमावली है और पूरी लिस्ट है, आप किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ तो फॉलो करिए।
2: जी जी जी। तो आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, और हमारे दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम जानकारियाँ दी। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम नमो धन्वंतराय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय।
0: धन्यवाद।
2: आशा करते हैं कि आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है health@gmail.com।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं।

0: 106 देश नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन SSB के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सब

0: तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है, ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
1: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
0: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें, तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा जो भी ऑपरेशन हुआ।
1: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक बहुत बता जी रहे हैं।
1: तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे, और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था, लेकिन मेहनत बोला जाता है करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजुरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है, और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही, जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी।
0: इसमें जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है, और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं हमारे।

0: कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं, और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहाँ से ख़त्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे नौजवान युवक को, भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ

0: पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहाँ पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी।
0: तो बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी।
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
1: क्या बात है,
0: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी। तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
0: जी एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
1: अच्छा।
0: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
1: जी। और दो बार आपको मिला है,
0: दो बार गैलेंट्री।
1: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
0: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
1: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें
0: अच्छा।
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और हाँ सब
0: मिलकर, एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी, फिर तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा।
1: में ज्वाइन किया जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफबी के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी,
1: इंडो भूटान।
0: तो

0: आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था,
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था, उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा, हाँ। तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी,
1: हाँ। और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
1: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
1: हाँ। उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत। अच्छा,
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत।
0: अच्छा,
1: हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में।
0: बटालियन
1: जी जी।
0: अच्छा
1: जी, जी, जी।
0: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा,
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा,
1: असम में आ गई होली में जी।
0: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माओइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी। हाँ, लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद
0: अच्छा,
1: करते हैं जी।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं।
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी,
1: तो
0: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन
0: क्राइटेरिया जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल।

0: टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ओवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली. सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ. शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से. जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम. आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर. यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है. तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं. जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से. जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से. प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को. आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया ग्वालदम से. उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें.
1: फोर्स से ही मैंने की. जी जी
0: जी जी. आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये.
0: अच्छा.
1: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा.
1: खाना. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है.
0: ओके.
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज. और
0: अच्छा.
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा.
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है. जी
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर.
1: जी जी.
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें. जी जी जी. जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा.
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे.
1: इस टाइप के ड्रिल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम.
0: अच्छा. तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी जी जी जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा. यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा

0: पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल,
1: जी, हाँ तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है। अच्छा, अचानक सब चीज़ होता है,
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके, हाँ, एक तरह से ड्रिल, ड्रिल,
1: ड्रिल, ड्रिल, हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा,
1: कमजोर,
0: पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता
0: है, मोटिवेटेड रखने,
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा एक टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी, हाँ। और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
0: जी।
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी। आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: करना है जी, उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है,
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
0: जी। जी,
1: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: जी
0: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किए।
0: अच्छा।
1: जी
0: सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
1: जी,
0: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: न्यूज ऑन AIR। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं?
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा DJ सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी, ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर, आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी, ऐसा होता है कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको DG चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर, एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है

0: को भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है हमारा जो यंग जनरेशन है उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नहीं, तू ही बोलो पहला। नहीं नहीं बोलो।
1: ओ या कमाल करी जाना या तू कुछ कर जाना कैचियां गलत कर दा। मैं ओपनिंग कर देनी जाए तू ज्यादा बोल रहा था।
0: नहीं नहीं चाचा जी, तुम 2 मिनट रुको, ओपनिंग करने मैं है ना।
1: हाँ कर फिर, म्यूजिक ला जरा, 2 स्टेप ला ला मैं।

0: वेल दोस्तों 102.7 मेगा हर्ट्ज ते एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है ते अपना फेवरेट शो तुसी जेड़ा सुन रहे हो जी दा नाम है लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी शो तुसी सुन रहे हो ते इस लव यू जिंदगी वाले शो दे विच असी लव यू वाली गल्लां करांगे, यानी कि अपनी जिंदगी नू प्यार करन वालियां गल्लां बातां अज असी करांगे।
1: अले सारियां गल्लां तू ही करी जा भरा, सानू ना करन दे।
0: हां जी चाचा जी, तुहानू भी मौका मिलेगा, स्वीट नू भी मौका मिलेगा ते बांटी भाई नू भी मौका मिलेगा। केड़ी गल आ उस्ताद जी, लाओ जी फिर शो आपां शुरू करदे आ। अज दी जिहड़ी आपां तुहानू स्टोरी जिहड़ी सुनाउणी है बड़ी मजेदार, ते लो जी ये स्टोरी हैगी बड़ी मज़ेदार। एक पिंड विच एक बजुर्ग किसान रहिंदा सी, ते उहदे कोल एक गधा सी, ते गधा हर वेले मुस्कुराउंदा जिहा लगदा हुंदा सीगा। ते पिंड वाले मजाक करदे हुंदे सी, कहिंदे गधा इन्ना खुश क्यों रहिंदा, इहनूं तां काम ही काम करदा, इह मतलब इहनूं तां काम ही बड़े पैंदे ने। एक दिन किसान गधे उत्ते 2 बोरियां लद के मंडी वल चल पिया। राह विच एक बोरी फट गई ते अद्धा समान डिग गया। पिंड वाले हसन लग पए, अज तां भाई नुकसान हो गया, पर गधा पहलां नालों भी तेज़ तुरन लग पिया। किसी ने पूछा, ओए ओ तेरा बोझ घट हो गया इस करके खुश है? किसान हस के कहिंदा, ओ नहीं जी, वो ये तां हर रोज़ इंजी तुरदा है, वो इहनूं तां बीते बोझ का दुख हुंदा है, इहनूं तां बीते बोझ का दुख हुंदा, ना आउण वाले बोझ की चिंता, ये सिर्फ अज का राह तय करता है। सारे कुछ पल ही चुप ही हो गए। किसान फिर मुस्कुरा के कहिंदा, असी इंसान भी कमाल दे आ, कल दी टेंशन परसों दी फिकर ते 10 साल पुरानियां गल्लां सिर ते चुक के फिरदे ही रहने आ। फिर कहिंदे आ कि जिंदगी भारी है। एक बजुर्ग ने हसदे हुए कहा, लगता है अज गधा नहीं सानू अकल दे के, अज तो गधे ने सानू अकल दे दित्ती आ सिख्या। जिंदगी विच हासा ना छड्डो, जो बीत गया उसका बोझ ना ढोवो, अज नू दिलों जियो, क्योंकि मुस्कुराउंदा चेहरा हर औखा राह आसान कर दिंदा है। तो लाओ जी अज की इस कहानी दे विच सानू गधा जी सानू जिहड़ी आ उह एक सिक्ख्या दे गए ने, कि वैसे वाकई ना गल सही आ, किसी ने सही कहा कि सब तो वड्डी स्पीशीज जिहड़ी आ ना जानवरां दी उह इंसान ही आ, पर मतलब जिहदा ज़्यादा दिमाग हुंदा ना मैनू लगदा उह ज़्यादा दुखी रहिंदा। तो गधे ने अज सानू इह सिखा दिता, गधे जी मैं कहांगा, उन्होंने सानू इह सिखाया कि भाई प्रेजेंट में जियो। तो लो जी गधा जी भी कुछ कहना चाहते हैं सानू, आप सुनी लई। हाँ जी गधा जी, की कहना तुहाडा?
1: भला हो जे हो, क्या बात है गधा जी, तुसीं तां कमाल ही करती, दिन ही बना छड्डिया जी।
2: होर नहीं तो क्या, वो सही गल की गधा जी, मैं क्या तुसीं सानू सिखाया कि जिंदगी च जीना चाहिए, क्या बात है गधा जी, मैं क्या जी एक करी फेर हो जे।
0: ते लो जी दोस्तों कमाल कर दिती है गधा जी ने, सानू ये सिखा दिता है कि सानू प्रेजेंट दे विच जीना चाहिए, कभी टेंशन नहीं लैनी है जी दियां, ठीक है जी। तो टेंशन लैके जाना भी कित्थे आ, ते आपां चाचा जी को पुछ लैने आ।
1: भाई गल बिल्कुल ठीक की थी, भी सानू टेंशन नहीं लैनी चाहिए और टेंशन देनी चाहिए।
2: हाँ यार, किहो जी गल्लां करी जां?
1: ओ स्वीटू तू मिच ना बुल कर,

वल दोस्तों, इसे तरीके नाल मौज मस्ती चलती रहेगी। चाचा जी स्वीटू और ज्यादा मोंटू पाजी ते आर जे जोरावर सिंह दे नाल इसे तरीके नाल मस्ती दा सफर असी जारी रखांगे। बार हुण समा हो गया है जी प्रदेशिक खबरां दा। हुण तो कुछ चिर बाद ही तुसी प्रदेशिक खबरां चैनल ते सुनोगे।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने जनाब तुहाडे हरीश नाल तुहाडे और आगाज हो चुका जी साडे प्रोग्राम दा। हाँ जी जनाब की हाल चाल ने तुहाडे साडी महफिल स्टार्ट हो चुकी है, आगाज हो चुका है और मैं नाल हां तुहाडे, मतलब कि 11 बजे तक मैं ते तुसी, तुसी ते मैं, ये साडे प्रोग्राम्स दा आनंद असी इकट्ठे माणांगे और इंजॉय करांगे। तुहाडे फेवरेट वाले गाने सुनाउण नूं मैं आ गया और नाल नाल गल्लां, नाल नाल हर प्रोग्राम दा अपना अंदाज, अपना टेस्ट, अपना मज़ा, चस्का, सब कुछ होएगा तुहाडे लई, तुहाडे खातर महाराज इत्थे। और साडी इस महफिल दा पहला पड़ा, जिवें कि तुसी सब जानते हो, साडा पहला प्रोग्राम जिस विच कहानी हुंदी है उस स्टार दी, जिस विच कहानी हुंदी है उस दिग्गज दी, उस संघर्षशील इंसान दी, उस संघर्षशील इंसान जिसने अपनी मेहनत दे नाल कला दे खेतर दे विच अपनी एक अलग थां बनाई हुंदी है, फिल्मी खेतर दे विच फिल्मी कहानियां दा ओ पूरा गुलदस्ता असी इस प्रोग्राम दे जरिए तुहाडे तक पहुंचाउने आ। साडा प्रोग्राम जिसका मैं आगाज कर चुका महाराज फिल्मी दुनिया, और इस दुनिया का अपना ही एक रंग है, अपनी एक जगमगाहट है, चमकदार ये दुनिया जिसकी जिहड़ी चमक है ना, जगमगाहट है, वह सानू अपने वल खिंचदी है, और खिंचदी इसलिए है क्योंकि इतों के स्टार्स जिहड़े ने वो साढ़े तक अपनी चमक पहुँचाते हैं, और साडा भी दिल करता है कि असी भी उन्होंने स्टार्स की तरह चमकीए और पूरी दुनिया से छा जाइए। अज एक ऐसी ही चमक वाली चीज, वो शै, मतलब वो इंसान जिसने अपनी चमक दे नाल पूरे हिंदुस्तान नू जगमगाया, वो आवाज़ जिसकी गूंज अज तक साढ़े दिलों ते वजदी है, तो मतलब हर रंग का एहसास हुंदा, भावें कोई गम का एहसास होवे, खुशी का एहसास होवे, उसकी आवाज़ दे विच हर रंग मौजूद सी, अज भी मौजूद है उस दी ओ गूंज, भावें ओ आप साडे विच अज मौजूद नहीं है, बट अज असी उना दी गल्लां करांगे, उना दे गाने सुनांगे और उना दी लाइफ दे नाल रिलेटेड बहुत सारियां गल्लां हरीश तुहानू सुनाएगा, तुहाडे नाल

हाँ जी, हुण तो तुहानू पता लग गया है कि मैं किस सिंगर दी गल करन वाला, किस पर्सनैलिटी दी गल करन वाला है ना। 102.7 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे, और प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच असी हर वार किसी नवी शख्सियत दी गल करदे आ, उस स्टार दी, उस कलाकार दी गल करदे आ जिस स्टार कलाकार ने अपनी मेहनत दे दम ते उस स्टार्स वाली उपलब्धि नू हासिल कीता हुंदा। अज असी गल करांगे मोहम्मद अजीज साहब दी। ओ मोहम्मद अजीज साहब, ओ कमाल दी वॉइस जिन्हां नू मोहम्मद रफी साहब दी तरह ही जाणिया जाण लगा सी एक टाइम ते बिल्कुल। और कई लोग तां इह कहिंदे सी कि इह शख्स मोहम्मद रफी साहब दा बेटा है, या कोई इह कहिंदा सी कि इह उहनां दा कोई करीबी अजीज रिश्तेदार है, इसे करके आवाज़ भी उदां दी है और उहनां दी जिहड़ी शख्सियत सी उह भी उहनां वांग ही सी। मतलब संत आदमी, फकीर आदमी, और बड़े सीधे साधे भोले भाले वह इंसान हूबहू मोहम्मद रफी साहब की तरह। और ये जिहड़ी चीज़ है ना दोस्तों, जदों असी किसी शख्स नूं एडमायर करते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत मनते हैं उस शख्स नूं, अपना मनते हैं और चाहते हैं कि मतलब मैं उस तरह करां, उस तरह बना, उस तरह की काबिलियत मेरे अंदर कुछ गुण आ जाए, कुछ कण उसका जिहड़ा हैगा वह मेरे अंदर आ जाए, इदां जदों असी सोचते हैं करते हैं तो वह क्वालिटीज़ ऑटोमैटिकली जनरेट होंदियां ने तुहाडे अंदर। भावें तुसीं उस शख्स नूं मिले होवो या ना मिले होवो, कोई मुलाकात तुहाडी उहनां दे नाल होई होवे या ना होई होवे, यही क्वालिटीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब दे अंदर सी। और इसे करके उहनां नूं मोहम्मद रफ़ी साहब दे इन्ना करीबी मन्निया गया। मोहम्मद अजीज़ साहब जिन्हां दी अज असीं गल करांगे, 2 जुलाई 1954 नूं पश्चिम बंगाल दे एक छोटे जे पिंड दे विच उहनां दा बर्थ होया सी, अशोक नगर उसका नाम सी। और दोस्तों पश्चिम बंगाल कोलकाता और उसका वो छोटा जहा इलाका जिथे उन्हों का बर्थ होया, छोटा जहा परिवार, और परिवार की माली स्थिति जेकर असी गल करिए इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं सी। और इस स्थिति करके मतलब कहिंदे ने कि जदों कोई स्टार

मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला हे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने अज नवी दिल्ली च गलबात दौरान कई खेतरां च दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा कीती। रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही पंजाब दा दौरा करनगे। पंजाब दे मुख चोण अफसर आनंदिता मित्रा ने कहा कि सूबे च पहली जुलाई तक 97.44% गणना फार्मां दी वंड मुकम्मल हो गई है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय डॉक्टरी दिवस नूं समर्पित पहले सूबा पदरी सम्मान समारोह च सरकारी ते निजी हस्पतालां दे डॉक्टरां ते अधिकारियां नूं सम्मानित कीता।

0: अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
0: हर थोड़े से भाई टूटे ना

मेरे तक भेजा जी। अगला मैसेज मेरे तक भेजा जी, ये कहें जी हरीश जी असी मैसेज पहला तो भेजे जी। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, वाहेगुरु की मोहब्बत में खुश रहो, रेनबो जलंधर वालों आनंद माणो। मेरे तक पुजे जी सतीश अनेजा, बिबला अनेजा, दिल से कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद जी, थैंक यू मैसेज भेजने के लिए थोड़ा। और फिलहाल असी मेरे महबूब कयामत होगी गाना प्ले करिए जी, पहला आ जाओ।

हाजिर है हरीश एक बार फिर तो, और आगाज ए शाम ए गजल हो चुका है, और इस मदमस्त और खुशनुमा रात नू होर भी खुशनुमा होर भी मदहोश बनाउण दे लई साडा प्रोग्राम शाम ए गजल, जिस विच फीलिंग्स एहसास इमोशंस बखूबी हुंदे ने, और लबरेज प्रोग्राम एहसासां दे नाल, और इस एहसास नू जीउण दे एहसास दे नाल सानू एक बार फिर तो ये फील कराउंदा कि जिंदगी दे विच जज्बात किन्ने जरूरी ने, किन्ने अहम ने, वो यार वो प्यार जो साडे कोलों अलग तां हो गया पर विसरिया नहीं है, उहनां नू साडे तक दोबारा पहुँचाउंदा गजलां दा ये प्रोग्राम शाम ए गजल।

तुमसे दूर जाने की। मैं कोशिश में हूं खुद को धोखा देने की, मैं कोशिश में हूं खुद को बहलाने की, मैं कोशिश में हूं तुमसे मुंह मोड़ जाने की, मैं कोशिश में हूं खुद से झूठ बोलने की, मैं कोशिश में हूं अपने मन को समझाने की, मैं कोशिश में हूं तुम्हें भुलाने की, मैं कोशिश में हूं तुम्हें भूलने की। मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं होऊंगा, न जाने क्यों, पता नहीं क्यों, पर मैं कोशिश में हूं तुम्हें भूलने की।

एक नन्हा सा बच्चा किस तरह कितनी शिद्दत से किसी चीज को चाहता है ना, उसे किसी और चीज से कोई वाबास्ता नहीं होता सिवाय उस चीज से। उसके सपने, उसका वक्त, सब कुछ उसे एक चीज में लगा होता है जो उसे चाहिए होती है ना। उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं भाता। हमारी हालत भी इस वक्त उस बच्चे की तरह है, बस फर्क इतना है कि बच्चे को उस चीज से वाबस्ता होता है और हमें तुमसे है।

तुमसे बात करने और तुमको मिलने की तमन्ना हर वक्त रहती है। तुमसे हम दूर होते हैं तो फिर भी तुम्हारे पास होते हैं और तुमसे हर वक्त मिलने की एक आस जगी रहती है इस दिल में। और जब कभी भी वक्त मिलता है और दिल करता है कि भाग कर तुमसे मुलाकात हो जाए, लेकिन ये मुलाकात बड़ी तड़पाती है क्योंकि तुमसे मुलाकात होती ही नहीं। और रह रह कर वो लम्हे मुझे सताते हैं, मुझे कहते हैं कि बस भी करो, अब और कितना काम करोगे। अपने शहर से दूर, अपने अपनों से दूर, अपने हमदम से दूर, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने अपनों से, अपने हमदम से दूर, रोजमर्रा की जरूरतों की खातिर दूर बैठे होंगे और याद कर रहे होंगे अपने अपनों को, है ना। और वो अपने अपनों से दूर होकर भी उनके पास रहते हैं, उनके एहसास में, उनके जज्बात में, हमेशा हमेशा के लिए।

गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास, गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास, क्या चाहता है मुझसे,

ना जाने कौन से छिपाए हैं इसने भीतर अपने राज, जो सुनाई नहीं पड़ते पर गूंज रहे हैं मेरे आसपास। एक महक है जो बसना चाहती है सांसों में, एक चमक है जो लेने लगी है अंगड़ाई आंखों में। क्या ये नया अंजाम है या है आगाज, गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास मेरे पास।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज़ हो चुका है हरीश नाल तुहाडे और न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते। हरीश सब दा स्वागत करदा, अपने सारे लिसनर्स दा स्वागत करदा और इस वेले तुसी मेरे नाल हो और ये गहराउंदी हुई रात होर भी सोहनी लगेगी, होर भी महकेगी और थोड़े साथ दे नाल और नाल नाल रेट्रो सोंग्स दे साथ दे नाल प्यार दे नाल।

एक बात है दोनों के दरमियां जो बेकरार है कुछ कहने को, मगर खामोश है वो, पर मचल रही है जुबान से होठों तलक आने को। कैसे कहे कुछ, क्या कहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वो बात जो सांस ले रही है जज्बातों में, जो चुपके चुपके से झांक रही है आंखों में, जो शायद जी रही है ख्वाबों में, जो कभी बहुत बातूनी थी मगर आज बेआवाज है, पर सुकून से भरी इनायत है वो। एक बात दोनों के दरमियां जो बेकरार है कुछ कहने को, पास आने को मगर खामोश है वो, खामोश।

शायद आप में से किसी को हुआ हो, मुकम्मल होकर भी अधूरेपन का एहसास, शोर में रहकर भी मौन का आभास, गूंजती हुई शहनाइयों का अचानक से सुन पड़ जाना, मचलते हुए जज्बातों का एकदम से खामोश हो जाना, चलते चलते राहों में खुद ही रास्ता भटक जाना, खुशियों संग यारी निभाते निभाते खुशियों से ही उब जाना, नन्ही उम्र में उसारा हुआ महल खुद ही पल भर में ढह जाना, हर दर्द गम मुस्कुरा के सह जाना, खुद से ही कभी कभी ना मिलने के बहाने बनाना, बीते लम्हों की कैद से आजाद होने की आस, शायद आप में से किसी को हुआ हो मुकम्मल होकर भी अधूरेपन का एहसास। और जब किसी को ऐसा एहसास होता है तो यही होता है।

कभी सफर छूट जाएगा, ये शहर भी छूट जाएगा। जहां हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है, वो दर भी छूट जाएगा। और कभी सोचा नहीं था।

कि एक दिन वो घर छूट जाएगा और इस दुनिया में जो भी हमारा है एक दिन हमसे दूर हो जाएगा, ये तो तय है। और फिर इसीलिए किसी भी चीज के साथ इतना लगाव, इतना जुड़ाव होना नहीं चाहिए। लेकिन साहब ये तो दिल है, किसी से भी लग बैठता है, किसी को भी अपना बना लेता है, किसी के साथ भी एक रिश्ता सा बना लेता है, जैसे घर के साथ, गलियों के साथ, मित्रों के साथ, साथी के साथ, शहर के साथ, है ना।

आगे सफर था और पीछे हम सफर था, रुकते तो सफर छूट जाता, चलते तो हम सफर छूट जाता। मंजिल की भी हसरत थी और उससे मोहब्बत भी थी।

ए दिल अब तू ही बता उस वक्त मैं कहां जाता। मुकद्दर का सफर भी था और बरसों का हम सफर भी था, रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिखर जाते। और हमको शायद बिखरना मंजूर था, हम उससे दूर नहीं हो सकते थे।

तुझसे दूर जाने से डर लगता है, तुझसे दूर जाने से डर लगता है मुझको, अब मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। तुम्हारे साथ के साथ होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वेले तुसी सुन रहे हो हरीश दे नाल एक प्यार का नगमा है, और